0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: गायब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान।
3: मदरसा दारुल कुरान व सुन्ना लिल बनैन वल बनात, मोहल्ला तौहीदाबाद, गांव स्पिनकाणी, नजदीक जामे मस्जिद तौहीद।
4: जमुन को मदरसा के सहर दशपगु बजो नवाखला तर गर्मी दुल सुबह जो पूरे जनानो तालीम और हम दगशान ददरु बजो नवाखला तर माखा पूरे नारिनो तालीम खुद लिशी चिपाही की कायदा तर्जुमे कुरान नाजरे कुरान हिफ्ज़ुल कुरान और दर्जी उलाना दौरे हदीस पूरी किताबुना खुद लिशी ज़ेर निगरानी मोहतम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सैब और नाजिम साबिर हनफी सैब। कॉन्टेक्ट नंबर तौसीफ अहमद खाकसार 0315-6386-080। मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सैब कॉन्टेक्ट नंबर 0314-06-93-596। नुहम उसराशे वल औलाद ना दा दुनिया हम खेस तकड़े और आखिरते हम खेस तकड़े मुंसरा दाखिली शुरू दी।

काम की बा ये वजह सवाल हम रोड़ हाँ प्रोग्राम की ये वजह सवाल बा हम रोड़ माँ और दस कार बकू कना च सवाल बा टाइम टर टाइम अब या बदलू हम हाँ शियो कसमुंग तो सवाल जवाब रा की ब्याब सवाल चेंज को ठीक दा कना बिल्कुल ठीक दा हाँ

0: जी सिफर 928 280 495। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। सो को रिचर था ना
1: परी हां सीरी को ना
0: उठ बचा तो रखो है। हेलो ओके आवाज मुलाड़ो सिफर 928 280 495। गुरु जी मुख सरा लाइफ कॉल सुक्रासी और चरतना द करिश्मा खोर और द अहमद मुकाबला रवाना दा गुरु बच्चे दा बसू कुड़ी हां।

0: जिंदगी एक खूब
1: वेल बी बैक बैक राइट आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक।
0: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान।
3: मदरसा दारुल कुरान व सुन्ना लिल बनैन वल बनात, मोहल्ला तौहीदाबाद, गांव स्पिनकाणी, नजदीक जामे मस्जिद तौहीद।
4: जमुन को मदरसा के सहर दशपगु बजो नवाखला तर गर्मी दुल सुबह जो पूरे जनानो तालीम और हम दगशान ददरु बजो नवाखला तर माखाम पूरे नारिनो तो तालीम खुद लिशी चिपाहे की कायदा तर्जुमे कुरान, नाजर कुरान, हिफ्ज़ुल कुरान और ददरजी उलाना ददौर हदीस पूरी किताबुना खुद लिशी। ज़ेर निगरानी मोहतमिम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सैब और नाजिर साबिर हनफी से। कॉन्टेक्ट नंबर तौसीफ अहमद खाकसार 0315-6386-080। मुफ्ती मोहम्मद नाहिद से कॉन्टेक्ट नंबर 0314-06-93-596। नुहम उस राशे पुल औलाद ना दा दुनिया हम खेस तकड़े और आखिरते हम खेस तकड़े मुंसरा दाखिली शुरू दी।

ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज, ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे। कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
2: सवाबी। माँ वेले माले शारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू दपारा शारजी तिंगलार शमा।
2: ओहो, पमीना बाजार टोपई की दशारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और दशारजा टोल वेरायटी मौजूद दा
3: नुद्दा सिवाया कना
2: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स, फोन 0938273265।
4: कामयाबी की नई मंजिल की तरफ पहला कदम उठाएं। कायद आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में FSC फर्स्ट ईयर में दाखिले और रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में अभी दाखिला हासिल करें। जदीद क्लासरूम्स, तजुर्बाकार असातिज़ा, बेहतरीन तालीमी माहौल और शानदार नतीजे के साथ हम आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरअज़म हैं। हमारे कैंपसेस मौजूद हैं शमसी रोड मर्दान, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, हकीमाबाद नौशहरा, सवाबी, जैदा और मैनी चौक कोठा। आज ही अपने करीबी कैंपस का विजिट करें और दाखिला यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और दाखिले के लिए हेड ऑफिस के नंबर 0938280103 पर राब्ता करें। आदी आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जहां तालीम बनती है कामयाबी की जमानत।
5: खुश खबरी हागा ठोल बीमारान चा हड़ुकी माछी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चिदचा दखपो औ दलासुनु गुतु रगुन बन शिवी औ या गुते बेहरकत शिवी औ दचाचे दखपो द कुंडो दनन लाड़ खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगटोली जनाना चिदचा खपे औ लासुना सुनकीगी औ हगटोल मरीजान कमचे दमला दमहरो या द पटो मरीजान हुई या दमाशुमानो खपी कगी हुई न दहागे टोलो मरीजानो द पारा द खुशालाई खबर उस बाद हर इतवार पर रोज बांधी सहर द अथो बजो नवाखली माजिगर चरसलोर बजो पोरे द इस्लामाबाद और द पेखवर नुमावड़े डॉक्टर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन डॉक्टर तारिक रहीम सेब MBBS MCPS FCPS एक्स रजिस्ट्रार HMC पिशावर सहर द अथो बजो नवाखला माजिगर तरसलोर बजो पूरी तासो तशरीफ रवड़े शे नुपा तैयार साथे बिलाल प्लाजा अल सेद CNG ता महामख कोंडा मोड़ जहांगीरा रोड सवाबी। मजीद द मालूमात द पारा या द नंबर अगस्तो द पारा पदे नंबर राबितो के 0314 15 13 232 یعنی کہ 0314151323

जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
2: Just seconds away from more of your favorite music on
3: FM 94.
4: Your family channel in your own town.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
2: You're just seconds away from more of your favorite music on
3: 94.
4: Your family channel. In your own town.

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान।
3: मदरसा दारुल कुरान व सुन्ना लिल बनैन वल बनात, मोहल्ला तौहीदाबाद, गांव स्पिनकाणी, नजदीक जामे मस्जिद तौहीद।
4: जमुन को मदरसा के सहर दशपगु बजो नवाखला तर गर्मी दुल सब बजो पूरे जनानो तालीम, और हम दगशान ददरु बजो नवाखला तर माखाम पूरे नारिनो तालीम खुद लिशी चिपाही की कायदा तर्जुमे कुरान, नाजरे कुरान, हिफ्ज़ुल कुरान और दर्जी उलाना दौरे हदीस पूरी किताबुना खुद लिशी। ज़ेर निगरानी मोहतम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सैब और नाजिम साबिर हनफी सैब। कॉन्टेक्ट नंबर तौसीफ अहमद खाकसार 0315-6386-080। मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सैब कॉन्टेक्ट नंबर 0314-06-93-596। नुहम उस राशे वल औलाद दा दुनिया हम खेस तकड़े और आखिरत हम खेस तकड़े। मुंसरा दाखिली शुरू दी।

बेलाडोना व्हाइटनिंग क्रीम, बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग ला सके। द होम्योपैथ द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की पुरानी सुविधा।

0: बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल।
1: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग।
2: ये है रेडियो दिल पर, आपकी दिल की आवाज, आपकी दिल की आवाज। ये है रेडियो दिल पर, आपकी दिल की आवाज, आपकी दिल की।

0: लकतियारो लकतियारो में दरना तस्वीर तड़ेर उजड़ा नन में दहागे बेवफा तस्वीर तड़ेर उजड़ा लकतियार में दरना तस्वीर तड़ेर उजड़ल नन में दहागे बेवफा तस्वीर तड़ेर उजड़ल कलू न पस में सा तस्वीर याद शुले है कलू न पस में सा तस्वीर उली दुरा याद में श्वे कलू न पस में नंद श्पे व्या तस्वीर तो उजड़ल मड़ा तस्वीर तो खोली वनी जा रही है
1: मड़े तापस से माचे पचास रसे
0: ए माचे पचास रसे दमे हाउ
1: से हाउ से
0: दादा वेना लगे द्रना उकड़ खैर नहीं में ख्वाहिश स्ता नसीब माने बला शिकान रसेदरी मुबारक शाह गुट वता कवा पहले कहो दे किसरे वाला खत्म अकड़ा खत्म अकड़ा बचे हो दे कार वाला खत्म को कसिंगा पाखे देखवा

0: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग।
1: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।
2: मामू का बोका खुले दे।

0: लोग मुझ में मोहब्बत तलाश करते हैं,
1: दिल ये खुद से खफा है, खुद ही ये रो।
0: मैं तेरे बात किसी का रहा ही नहीं।

लोग मुझ में मोहब्बत तलाश करते हैं, मैं तेरे बाद किसी का रहा ही नहीं। वो सब इल्जाम मेरे नाम करके बिछड़ने का बहाना चाहते हैं।

हम को मोहब्बत भी उनसे हुई, जिनका जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं था।

Tonga. जो कहता था तारे तोड़ कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पे।

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।
1: मामू का बोगा खुले दे बोगा नोटिस।